0: जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ओस्लो दौरे में

0: हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
2: India is accelerating towards universal health coverage.
3: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भी इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करे और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड

0: गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचार के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए

बद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी पर रेनबो हेल्पलाइन, ये है समय जो कह रहा है कि शुरुआत हो ही जानी चाहिए रेनबो हेल्पलाइन, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्प करता है। हर तरह से, हर तरह के टॉपिक आप तक पहुंचते हैं, ताकि आपके लिए कोई भी मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप किस तरह से हेल्प लें, किस तरह से अपने आप को गाइड करें, वो दिशा दिखाता है ये शो रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी, और आज रेनबो हेल्पलाइन में महिलाओं के लिए खास तौर से बात, संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की बात होगी, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास आज का टॉपिक है, संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। और इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी हैं, वो भी हमेशा की तरह एकदम खास हैं, आर विमला जी, और ये हैं IAS रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में। तो चलिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, चलिए हम बात करते हैं उनसे, और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। तो विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बबिता जी।
0: तो चलिए, इसी के साथ हम बहुत सारी बातें करें, आप सबके सवालों को भी जोड़ लेते हैं, और वो कैसे जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे किस तरह से, फोन नंबर्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। फोन नंबर्स 2342-1080 या 2342-1084, दो नंबर्स हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं, अपना सवाल लिखना चाहते हैं, तो 9868-1070-70 का सहारा लीजिए और अपना व्हाट्सएप मैसेज हम तक पहुंचा दीजिए, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ। तो मैं चाह रही हूं कि विमला जी से सबसे पहले जवाब मांग लूं कि भाई इस टॉपिक से, इस विषय से हमारा क्या मतलब है, ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी।
1: बबिता जी, हम अगर देखें और सोचें कि हमारे देश में हम कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी देवी का रूप है, घर में समान हक होना चाहिए, पर अक्सर हम लोग देखें कि हर जगह आज की नारी कई जगह असुरक्षित है।

0: घर के भीतर अगर हो तो घरेलू हिंसा होता है, मानसिक उनको कुछ सामना असंतुलन सहना पड़ता है, दहेज की बात होती है, आर्थिक निर्भरता होती है। सार्वजनिक स्तरों पर मतलब आमतौर पर अगर हम लोग देखें, अक्सर भी हम लोग देखते हैं कि सड़कों में, बाजार में, पार्क में, छेड़छाड़ में अक्सर उनको सामना करना पड़ता है। रात के समय शौचालय जाते समय भी उन्हें असुरक्षितता होती थी। सार्वजनिक परिवहन में हमने अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां वो असुरक्षित है। कार्यस्थल पर अनफॉर्चुनेटली यौन उत्पीड़न होती है, वेतन में भेदभाव होता है, मानसिक दबाव होता है, और शैक्षणिक में तो रैगिंग की बात होती है, कभी कभी शौचालयों का प्रावधान नहीं होता है, तो एक असुरक्षित वातावरण होती है। डिजिटल में आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत तरह से हम लोग देखते हैं, डीप फेक्स है, साइबर बुलिंग है, फर्जी प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और सामाजिक, मैं आश्चर्यचकित हुई थी कि महिला बाल विकास, जब मैं सेक्रेटरी थी मुझे लगा था कि बाल विवाह खत्म हो गया है, पर बाल विवाह अब भी शुरू है। तो इस तरह के जो आपदा महिलाओं पे है, मानव तस्करी होती है, रोजगार की असुरक्षा होती है, तो हर तरह से आज हम लोग देखें, हम कह रहे कि महिलाएं की डेवलपमेंट हो चुका है, बट एट द सेम टाइम हम अनुभव करते कि कई प्रकार के इन्हें डिफिकल्टीज है और असुरक्षित कई जगह वो फील कर रही है। तो आज हम लोग यही सोचना और समझना चाहते हैं कि इससे बाहर गवर्नमेंट काफी सा पहल उठा रही है, पर वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए और वो आगे कैसे बढ़ सकती है, इस पे हम लोग चर्चा करना।
1: हाँ, और आपने जैसे बताया कि इस तरह से इस विषय को समझना बहुत जरूरी है, और हम सबको पता है कि हम महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेशन जरूर है हम महिलाओं में। बहुत सारी बातें हैं जो उनके दिमाग में चल रही होती हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, और खुद अपने लिए वो शायद प्रायोरिटी अपने आप को नहीं रख पाती हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस की भी बात करेंगे, और उसके बाद वो उससे निकलते हुए किस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं हैं या अपने लिए किस तरह से वो हौसला बांधकर आगे बढ़ सकती हैं, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और चर्चा नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हों, सुरक्षित हों, और कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके लाइफ को वो भी पूरी तरह से एंजॉय करें जैसे कि समाज में होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है, और आज विमला जी बहुत अच्छे से आप सबको गाइड करने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं आप महिलाओं को या आपको लग रहा है कि कहीं कहीं आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं लेकिन उसका सलूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसका निकाला जा सकता है हल, तो ठीक है, आपके लिए ही तो ये नंबर्स हैं जिनका उपयोग करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारी अतिथि आपका पूरे तरह से अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 2342108023421084, ये दोनों हमारे नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकती हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल हमको लिखकर भेज दीजिए। 9868107070 ये हमारा नंबर, जिसका लाभ उठाइए और फटाफट व्हाट्सएप मैसेज कर डालिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
4: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: ये आकाशवाणी और आकाशवाणी पर शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ हमारी अतिथि आर विमला, जो कि IAS हैं, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। और आज विषय क्या है? आज का विषय है संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। आपने

0: बताया विमला जी कि हर तरह से हर तरफ मतलब हर फील्ड में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी जरूर देखने को मिलती है। वो बात अलग है कि अभी बहुत सारे पुरुष ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे या महिलाएं हैं कि सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारे फायदे भी उठाए जा रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो महिलाओं को, चाहे वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं या फिर बाहर किसी तरह का वायलेंस हो, और बहुत सारे ऐसे केसेस आपको हर दूसरे दिन दिख जाएंगे जहां पर बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, बहुत अच्छे परिवार से थी, लेकिन शादी के बाद या शादी के पहले उसके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ, वायलेंस हुआ, और कई बार ये चीज़ें बाहर तक नहीं आ पाती हैं। आप क्या कहेंगी?
1: बिल्कुल, अगर हम लोग देखें तो महिला की असुरक्षितता घर में तो है ही, और बाहर तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की उन्हें डिफ़िकल्टीज उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मुझे लगता है कि सखी वन स्टॉप सेंटर जो गवर्नमेंट ने स्थापित किए हैं, प्रत्येक जिले में ये ऐसा एक सेंटर स्थापित किया है कि जो पीड़ित महिला है सबसे पहले चाहती है कि जब वो पीड़ित हो कि कहीं ना कहीं उसे आश्रय मिले। तो ये जो सेंटर होता है जिले के प्रत्येक जिले में होता है जहाँ पर महिला जा सकती है। 800 से ज्यादा हमारे देश में ये सेंटर्स हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दो भी हैं। तो वहां अगर ये पहुंचे तो 5 दिन का आश्रय तो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इनको मेडिकल हेल्थ जो सपोर्ट होता है, लीगल सपोर्ट चाहिए, और बेसिकली जो उनको काउंसलिंग चाहिए रहता है, पुलिस की जो सपोर्ट चाहिए रहते, तो हर प्रकार से इनको इस वन स्टॉप सेंटर जो सखी के नाम से ही जाना जाता है, अच्छा, उन्हें इस तरह का सपोर्ट मिल सकता है। तो वहां बेशक कई महिलाएं जो मैंने देखा भी है और इस पर मैंने रिसर्च भी किया है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि महाराष्ट्र में 10,000 से ज्यादा महिलाएं यहां पर पहुंची थी, और जब वो यहां पर पहुंची तो हर बार उन्हें ऐसे हर बार आधार मिला हुआ है, वो आगे बढ़ चुकी हैं। उनको सपोज उनको कुछ लीगल सपोर्ट चाहिए था या हेल्थ का था, ये था, बिकॉज वहां पे बेड्स अवेलेबल होती है, डॉक्टर अवेलेबल होता है, काउंसलर्स अवेलेबल होती है, पुलिस वहीं पर आके इनका जो FIR दर्ज करा लेते हैं, तो परिपूर्ण तरह से वो सुरक्षित तो रहती है। इसके अलावा उसको सारा सपोर्ट मिलता है और उसकी गाइडेंस भी मिल जाती है कि 5 दिन के बाद उसको कहां जाना, ये भी बड़ा प्रश्न हो सकता है।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है जिसमें संबल है, तो इसमें वो जाकर के जो हमारा महिला सहायता केंद्र है जो हॉस्टल्स होती हैं, तो वहां जाकर वो आश्रय ले सकती है, कंटिन्यूअसली 2 साल के पीरियड तक वो वहां रह सकती है। तो इस तरह से अलग अलग योजनाएं गवर्नमेंट की, और सबसे बड़ी बात है कि 181 हेल्पलाइन है। तो 181 हेल्पलाइन में अगर किसी ने भी फोन किया तो उन्हें तुरंत जवाब मिलता है। जैसे हमें आज ही मैंने या कल कोई पेपर में देख रही थी किस तरह के सपोर्ट महिलाओं को इस प्रकार से 181 हेल्पलाइन से मिल पाया है। तो गवर्नमेंट से हर तरह से हमें ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि महिलाओं तक हम लोग पहुंचे, उनको ये आधार मिले कि वो अकेली नहीं है। जबकि इस तरह का उनके लाइफ में कुछ किसी भी प्रकार की तकलीफ आए तो वो गवर्नमेंट को सपोर्ट सीख कर।
0: आपने जैसे कहा कि बहुत सारी महिलाओं को किस तरह से वो वन स्टॉप जो सेंटर है वो हेल्प कर रहा है, बट ऐसी जगहों पर भी क्या कोई प्रयास किए जाते हैं जहां पर महिलाओं के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, गांव देहात के एरिया हैं, ऐसा ही कुछ सवाल है, तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं जो हमारे लिसनर हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, सबसे पहले तो मेरा मैम साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: हाँ जी
2: जी, मेरा सवाल ये ऐसा है कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं है तो उनको पुनर्वास कैसे किया जाए, क्योंकि कई महिलाएं ऐसे हैं जो अपनी आवाज उठा नहीं पाती हैं या उनको कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि कई बार उनके पास जो है फोन नहीं दिया जाता है, क्या बोलते हैं कि तो किस तरह से वो अपना हेल्प ले सकती, क्योंकि उनके पास फोन जो हिंसा करते हैं वो फोन तो नहीं दे सकते, उनको पता कि हमारी कंप्लेंट होगी तो फिर वो कैसे कर सकती है।
0: चलिए, थैंक यू सो मच अपने सवाल के लिए। आप जवाब सुनिएगा रेडियो पर, और ये आप ही की जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक पुरुष की तरफ से ये सवाल आया है जो कंसर्न दिखा रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से असुरक्षित माहौल मिल रहा है गांवों में कई बार।
1: तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं स्वयं सहायता गट की बात आपसे कहूंगी कि हर जिले में हर गांव में आज की तारीख में जो NRLM आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता गट उपलब्ध है, वहां अगर महिला जाए तो सारी महिलाएं ही इनके साथ जुड़ी रहती है, और अच्छा, उनका ये सारा नेटवर्किंग ही इसी काम के लिए रहता है कि जो सबसे पीड़ित महिला हो तो उसे पहले तो घर से बाहर निकाल कर गट में स्थापित करवाना, उनको सपोर्ट देना, फिजिकल मेंटल जो भी है काउंसलिंग कराना, तो ये अपने गांव में ही इनको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये जाकर स्वयं सहायता गट में शामिल हो जाए और

0: करीबन हमारे देश में 90 लाख से ज्यादा भी इस तरह के गट हैं, तो ये आपको वहां से सपोर्ट मिल सकता है, या तो फिर आंगनवाड़ी सेंटर है, आप आंगनवाड़ी सेंटर में अगर चले जाए तो वहां पे आंगनवाड़ी गाड़ी जो दीदी होती है उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या फिर आशा वर्कर भी होती है मेडिकली अगर भी हो वो, तो वो आपको सपोर्ट कर सकती है। ग्राम पंचायत कार्यालय होता है जहाँ पे हमारे जो प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो जो पटवारी होते हैं उनके कार्यालय में भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो प्रत्येक गांव में इस तरह की कार्यालय हैं जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि वहां आपको हर तरह का जो सपोर्ट है वो जरूर मिल जाएगा। और पास के पुलिस स्टेशन में भी जो सेंटर्स हैं कुछ ऐसे, वहां पे काउंसलिंग के लिए भी लोग रहते हैं, वो आपको निश्चित रूप से हेल्प कर सकते हैं।
1: एक और सवाल इसी बीच हमारे पास आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको भी लाइन पर ले ही लेते हैं और देखते हैं उनका सवाल क्या है, और ये भी पुरुष की तरफ ही सही है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: ज्योत्सनी भुपेजा, LPP तुमपुरा दिल्ली से मैं बात कर रहा था।
1: जी बताइए।
2: मेरा प्रश्न था कि किसी भी युग में महिलाएं विधवा या कहते हैं डिवोर्सी हो जाती थी तो उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, और आज के युग में 3,000 रुपए मंथली दे रहे हैं प्लस फ्री बस पास, तो सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि कौन सी सरकार ने या किस शासन ने ज्यादा बेहतर करके दिखाया है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
0: तो मैं समझती हूँ कि जो स्कीम है हर स्टेट के अलग अलग प्रकार की स्कीम है, तो दिल्ली में फॉर एग्जांपल आप बता रहे थे कि 3,000, और निश्चित रूप से जो फ्री बस की पासेस हैं, हम देखते हैं कि आमतौर पे महिलाओं को घर से बाहर निकलना सपोर्ट मिलता नहीं है, तो एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स अगर मेरे पास ना भी हो तो मैं महाराष्ट्र का निश्चित रूप से कह सकती हूँ जहाँ पे मैंने काम किया है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती थी, आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो ये घर से बाहर निश्चित रूप से निकल सक रही हैं, जहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट है वहां तक पहुंच पा रही है। स्कूल के एजुकेशन अपन अगर हम लोग देखें तो उनके नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स है वो कम हो चुके हैं, तो ये सारे रिफ्लेक्शंस होती हैं जिससे हमें नंबर्स मिल सकता है। पर जो हमारे वेबसाइट्स होती हैं, तो जैसे पोषण ट्रैकर है हमारा, उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि महिलाओं को कितने सपोर्ट मिल रहा है, वहां से आपको प्रत्येक वेबसाइट में मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है।
1: तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मेरे पास अभी लगातार कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कुछ कॉल्स हम अभी अटेंड नहीं करवाएंगे क्योंकि जो सवाल अगर हमने कवर कर लिया है, हमने जिसका जवाब दे दिया है मैम ने, अगर आप वो सवाल रिपीट नहीं करेंगे तो आपकी कॉल लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राजेश कुमार चौहान जालंधर से लिख रहे हैं, इन्होंने कहा है कि मैम आज हमारे देश में बेटियाँ हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेटियों के प्रति संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
0: सच कहे तो हमारे स्कंद पुराण में भी लिखा है कि एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है, पर दुर्भाग्य की ये बात है कि जब बेटी पैदा होती है तो हम इसका जो सेलिब्रेशन नहीं करते, दुख मानते, तो इसीलिए हमने शासन की तरफ से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इसके तहत अगर हम लोग देखें तो बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमारे स्कीम्स के तहत हम लोग बच्चों को जो सपोर्ट दे रहे हैं, तो आज तक हम लोग देखें कि 640 जिले में इस तरह से ये स्कीम चल रही है, और लड़कियों को जन्म के उपरांत उनको सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा बढ़ाने के लिए उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना जो है, तो इसमें पोषण की बात होती है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको बच्चों को जो न्यूट्रिशन की बात होती है या आयरन टैबलेट्स की बात होती है तो ये पहुँचाने के लिए, तो इस तरह से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है या जननी सुरक्षा योजना है, जहाँ पे अगर लड़की पैदा हो तो 1400 रुपये या 1000 रुपये माता और शिशु के मृत्यु दर में कमी करने के लक्ष्य से किया गया है, तो अलग अलग प्रकार की योजना है जिसमें महिला अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। ICDS की जो योजना है, इसमें जो परिपूर्ण पोषण ट्रैकर होता है, जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं जो इनको अपना खाना देती हैं, जो मील हॉट मील हो सकता है या जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराने के लिए जो जननी सुरक्षा योजना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे या लड़कियां असुरक्षित कब होती है कि जब वो घर में जच्चा और बच्चा साथ में रहता है, अगर इंस्टीट्यूशन में जाती है प्रेगनेंसी के दौरान तो एक तो इनकी देखभाल भी होती है और वहां उनकी डिलीवरी हो तो बच्चे को प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छा मिलता है, टीका लगने में सुविधा हो जाती है, तो अलग अलग तरीके से महिलाओं को जो है, जैसे गर्भवती महिला से लेकर बच्चे पैदा होने तक और आंगनवाड़ी में जो है 6 साल के बच्चे तक, तो इसमें परिपूर्ण सेवा होती है जिसमें पोषण तो होता ही है, स्वास्थ्य की ध्यान रखी जाती है, स्कूल

0: की शिक्षा आंगनवाड़ी में मिल जाती है, तो 6 साल के बच्चे को नॉर्मली कहते हैं कि 1000 डे जो विंडो होता है, तो जब से प्रेग्नेंट होकर औरत होती है उस विंडो में जब हम लोग बच्चे को टारगेट करें, तो पैदा होने के पहले जो है 300 डेज और पैदा होने के बाद 2 साल, तो बच्चे की मैक्सिमम ग्रोथ उसी में होती है। तो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स दिए हैं लोगों के लिए, इसमें सारा यही एम्फेसिस किया है कि आंगनवाड़ी में ये सारा 360 डिग्री ग्रोथ वो बच्चे का हो। तो आंगनवाड़ी सेंटर इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे महिलाओं को जाकर ये सारे स्कीम्स के फायदा मिल सकता है, और वहां सभी महिलाओं ने जाना चाहिए। कई बार जो है फैमिली भेजती नहीं है, तो महाराष्ट्र में ऐसी भी स्कीम निकाली थी कि सब लोग आकर अपना पॉटलक एक साथ बैठ के खाना खाए, तो सास को भी ले आए अपने घर से, बच्चों को भी ले आए जो अगर पैदा हो, तो एक साथ रहना समाज के में बदल कब आएगा, जब हम खुद हो। जैसे अभी हमारे साथ जो बंधे हुए सारे भाई लोगों के ही फोन आ रहे हैं मुझे पूछने के लिए, जो हमारे बंधु है, तो ये सपोर्ट जब घर से मिलता है तो मुझे लगता है स्त्री को पनपने में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये संदेश भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ये पहल कोई भी हो, हम कितनी भी कोशिश कर ले, अल्टीमेटली फैमिली सपोर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप और मैं अगर हम लोग बाहर है और बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवारों ने हमारे इस तरह का एक पोषक वातावरण दिया था जहां पर्दा हो सके
1: जी।
0: तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: तो सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं, जिनको नहीं पता कि किस तरह से वो हम तक कनेक्ट कर सकते हैं, तो फटाफट फोन नंबर्स लिख लीजिए। और आज हम बात कर रहे हैं संकट से सम्मान तक महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास, इस विषय पर हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट है आर विमला, जो की IAS है, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो उनसे हम बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे और जान भी रहे हैं, तो फटाफट आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करिए इस नंबर पर 9868-1070-70 9868-1070-70। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी। One more time.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है, आपके साथ हूं बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट आर विमला जो कि IAS हैं, रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। और अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं संकट से सम्मान तक महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास इस विषय पर, और आप सबके जो सवाल हैं वो लगातार आ रहे हैं। अगर अभी तक सवाल नहीं पूछा है तो फ़ोन घुमाइए 2342108 मिलाइए या 2342108 पर कॉल कीजिए। अगर दिल्ली NCR के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाकर इस ये नंबर डायल कर सकते हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक सवाल कॉल के थ्रू आया हुआ है और मैं चाह रही हूं कि वो सवाल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
5: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
4: जी राजेंद्र जी, सवाल बताइए।
5: तो पहले तो बहुत मैम्स को गुड आफ्टरनून।
6: गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून जी।
5: जी, मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल है और अगर आप अनुमति दें तो मेरे एक दो छोटे छोटे सजेशन भी हैं।
4: जी तो सवाल बताइए, सजेशन तो काम दे रही हैं।
5: हाँ जी, सवाल मेरा ये है मैम कि जो है ये 33% जो आरक्षण गवर्नमेंट ने दिया हुआ है फीमेल को, क्या ये पर्याप्त है? 50% ही होना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि क्या नारी डिफेंस में कानून बनाने से बात बन जाएगी? हमें इसके लिए अपनी मानसिकता में भी जो है चेंजिंग नहीं लाना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि हमने नीति निर्देशक तत्व में सिर्फ इतना लिखा है संविधान में कि नारी के प्रति आप सिर्फ सम्मान का भाव रखें, इसको कंपल्सरी क्यों नहीं बनाए? ये करना ही है आपको, सिर्फ लिखा सम्मान का भाव रखें। उसी तरह के संस्कृत धर्म में हमने लिखा है नारी हमारी बुद्ध है, दासी गुलाम है, हमारी सहचरी जीवन साथी थोड़े हैं, तो इसमें करेक्शन की आवश्यकता नहीं है क्या? तो
4: आपके सवाल का प्लीज जवाब लीजिए, लेकिन इतने सारे सवाल एक साथ मत पूछिए, एक सवाल एक बार में। और अभी जो आपने जो नारी के आरक्षण की बात की और जो इन्होंने बहुत सारी बातें की उसका जवाब आप एक साथ दे दीजिए प्लीज।
6: तो महिला के आरक्षण देने का कारण क्या था कि समान अवसर प्रदान करे या राजनीतिक भागीदारी बढ़े, भेदभाव कम हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, नेतृत्व का सामना करने उन्हें मिलने? तो ये आरक्षण हमने जो किया हुआ है संविधान में भी है कि समानता का अधिकार है। तो ये ऐसे नहीं है कि अवसर की बात है, ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों समक्ष समान है और उन्हें इस तरह से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो भेदभाव का भी निषेध इस तरह से किया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, बट महिलाओं के लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि 15(3) जो तहत अनुच्छेद है अपने संविधान का, उसमें हमने विशेष कानून महिलाओं के लिए बनाई है और इसी के तहत अगर हम लोग आज देखें तो महिला सुरक्षा कानून हो, आरक्षण हो, पुनर्वास की योजना हो, आश्रय घर हो, हेल्पलाइन हो, ये सारे उसी के तहत है। तो इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि महिलाओं को एनफोर्स करने की बात नहीं आ रही है या उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमारे संविधान में है और लोगों को मिल भी रही है। हमारे जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उस हर स्कीम में महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर हम लोग देखें तो पहले MG नरेगा था, अभी विकसित भारत जी राम जी है, इसमें महिलाओं को सेम वेजेस की बात आती है। तो गवर्नमेंट या किसी भी स्कीम में एक्सपेक्टेड ये है कि गाइडलाइंस है तो गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए और एनफोर्समेंट भी हो रहा है, जैसे पॉश है या इस तरह की स्कीम्स जो आ रही है कि जो महिलाओं को अगर वो डिप्राइव्ड है या पीड़ित है तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है. तो इसीलिए मैं नहीं मानती हूँ जो मेरे श्रोता कह रही है कि उनको उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की बात है. निश्चित रूप से माइंडसेट की बात जरूर है,
4: बिल्कुल,
6: क्योंकि आज भी हम लोग अगर देखें तो जैसे हमारे श्रोतागण जिन्होंने भी फोन किया है, इनकी जरूर इच्छा है, प्रकट शक्ति है कि महिलाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े, उनको एक इक्वल स्थान मिले हमारे समाज में. पर हर एक व्यक्ति के मन में जब तक ये न आए, और ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है या जिस तरह से हक मिलने की बात नहीं है, ये घर से शुरुआत होती है कि घर में किस तरह से हम लोग अपना पोषक आता जो एनवायरमेंट क्रिएट करते अपने बच्चों के लिए, और वहीं से शुरुआत होगी. अगर हमने वहां से शुरुआत की कि इक्वल जो बच्चा लड़का या लड़की हो, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन ना हो, इनकी पढ़ाई में, इनके पोषण में, इनके देखभाल में, तो ऑटोमेटिकली ये समाज में आगे बढ़ती जाएगी बात, तो तब ये आरक्षण की बात निकल जाएगी. पर आज की तारीख में निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज भी कई विषमताएं हैं. तो जो हमारे बंधु कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए, मैं नहीं मानती कि बढ़ाना है. अभी तो निश्चित रूप से 50% तक तो कई जगह हो चुका है, कहीं कहीं हमारे 33% रिजर्वेशन है. तो रिजर्वेशन बढ़ाने से ही बात नहीं बढ़ेगी. ये अगर हम लोग रिजर्वेशन के प्रति जो रियल रूप जो महिलाओं को जो सपोर्ट करना है, और स्पेशली जो हिंसा की बात होती है महिलाओं के अगेंस्ट, ये जब तक ये रिग्निटी और रिस्पेक्ट की बात है, नॉर्मली ये पुरुषों के प्रति कोई इतनी तरह इस तरह का अनडिग्निफाइड बिहेवियर होता नहीं है. तो माइंडसेट हमारे घर से, हमारे समाज से ही शुरू होगा, तभी चेंज हो सकता है.
4: इसी तरह का एक सवाल शैलेंद्र वर्मा का भी है कि इन्होंने लिखा है, घर में बेटी और बेटे का फर्क होता है, इसे कैसे खत्म किया जाए?
6: भाई ऐसा है कि ताली तो घर में ही बजेगी और मतलब वहीं से शुरुआत होगी. तो अब जैसे मैं अपना निजी उदाहरण दूं तो हम लोग चार भाई बहन थे, तो अपने पेरेंट्स से हमें तो कभी ऐसा कोई भेदभाव मेरा हुआ नहीं, या मैं जो समाज में उसे निकली हूँ, हाँ मैं पढ़ाई करी हूँ और मैं आज मैं दिल्ली स्थित काम कर रही हूँ, तो मेरे पति फिलहाल तो मुंबई में है. तो हमको किस तरह का एटमोसफेयर घर में मिलता है, हमको किस तरह का सपोर्ट मिलता है, और आमतौर से मुझे लगता है ये पुरुष को ही फर्स्ट स्टेप उठाने की जरूरत पड़ जाएगी. क्योंकि देखा जाए तो ये जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स है, अगर हम लोग देखें तो हमारे संस्कारों में या हमारे जो भी गाइडलाइंस है समाज के, तो नॉर्म्स तो जेंडर ओरिएंटेड जब बने हैं, जबकि पुरुष प्रधान संस्कृति हमारे यहाँ है कि बेटी जब होती है तो जैसे लोग बर्फी या बांटते हैं, पेड़े नहीं बांटते. तो हमारा ये माइंडसेट जो है ये घर से जब बदलेगा, तो वहां से पहल शुरू होगी, तो तभी हम ये इतने सारे जो योजनाएं हमारी गवर्नमेंट से हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समाज में बदल आए, तब
4: बिल्कुल. और एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई हैं उन सब का लाभ लेने की जरूरत है. और उनके बारे में एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप गाइड करें, उनके बारे में बताएं. एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और लौट कर आते हैं तो उन सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं और उसका लाभ क्यों और कैसे, क्यों नहीं ले पा रहे और कैसे लिया जा सकता है, उस पर और चर्चा करेंगे. आपके सवाल हैं तो अभी भी आप लिख कर भेजिए या कॉल करिए.

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: संकट से सम्मान तक महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में। एक्सपर्ट IAS रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हमारे साथ हैं और आप सबके सवालों का जवाब दे ही रही हैं, साथ में बहुत सारी योजनाएं भी बता रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनी है ताकि सभी महिलाओं को लाभ मिल सके। एक बार उन योजनाओं की तरफ फिर से रुख करेंगे और अगर कहीं आप मिस कर रही हैं जानने में समझने में तो अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए या कॉल करके हम तक पहुंचा दीजिए। 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करना है, 9868-107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है फटाफट क्योंकि टाइम बहुत कम है। सभी योजनाओं को एक बार फिर से सुनना चाहेंगे ताकि कहीं कुछ मिस हो गया हो तो वो सब लोगों तक पहुंचे।
3: हमने जैसे सोशल स्कीम्स, वेल्थ हेल्थ की स्कीम्स हो, इन सब के बारे में बात किया, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आजीविका एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड स्कीम्स जो हैं, जो महिलाओं को सही स्थान समाज में जो दिलाती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है महिलाओं को, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तब वो उसे वॉइस मिलती है फैमिली में और अपने आप को भी वो पनप पाती है। तो इसीलिए हम लोग इस बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये इसमें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए जो ऋण मिलता है, तीन प्रकार का इसमें जो ऋण होता है, शिशु और युवा जो है, तो 50,000 से लेकर ये हमें करीब करीब 50,00,000 तक का इसमें हमें सपोर्ट मिल सकता है महिलाओं को अगर कुछ बिजनेस करना हो। अच्छा। तो जैसे शिशु होता, किशोर होता, शिशु होता है 50,000, किशोर 5,00,000, तरुण 10,00,000 और 20,00,000 तक की इनको सूक्ष्म उद्यमी बनने के लिए सपोर्ट मिल सकता है। आज तक 51 करोड़ से ज्यादा इनको लोगों को ऋण मिल चुका है और इस साल में 20,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है, PMEGP जिससे हम लोग जानते हैं, जिसे तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज

0: बोर्ड है या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर होता है, या ऑनलाइन है केवीआईसी ऑनलाइन, इसके तहत ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इस योजना की बात है कि 15 से 35% इन्हें मार्जिन मनी जो है ये सब्सिडी के रूप में मिलता है। अगर एक इन्होंने सपोज 5 लाख का लोन लिया है तो इसे कमी कमी औरतों को तो 35% वापस देना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो इन्हें अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है तो परियोजना में उनको 50 लाख मिलते हैं। अच्छा। सर्विस कुछ यूनिट सेटअप करना है तो इन्हें 20 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह से छोटे उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एससी एसटी या महिला के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ की राशि तक का ऋण इन्हें मिल सकता है। और इस तरह का गवर्नमेंट से, बैंक से सपोर्ट वहां जाके वो अगर अप्रोच करे तो इन्हें निश्चित रूप से सपोर्ट मिल सकता है। स्टेप योजना जो है जिसके अंतर्गत लोगों को सपोर्ट अगर चाहिए तो ये अपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट में या केंद्र में जाके सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली स्किलिंग की जो महत्व होती है, तो स्किल जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसमें से सिलाई हो, कंप्यूटर हो, हस्तकला हो, इसका तो मिलता ही है, पर सॉफ्ट स्किल्स जो है वहां से भी लोगों को मिलता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो तो वहां पे स्किलिंग की बात होती है। और अभी जो है हम लोग महिला ई हार्ट है या शी मार्ट है, क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो मार्केटिंग कहां करे, ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है महिलाओं को। तो शी मार्ट के तहत अभी सब जगह शी मार्ट शुरू हो रहे हैं तो वहां जाके वो मार्केटिंग कर सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम मुझे लगता है जिसमें फिनोमिनली चेंज हुई है, महिलाएं लखपति दीदी बन गई है, जो है आजीविका मिशन एनआरएलएम का जो है, और जिसके साथ मैं भी महाराष्ट्र में 4 साल तक जुड़ी रही, तो आज तक इसमें 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी है, मोर देन 91 लाख इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठित हुई है। तो इसमें ऋण हो, कौशल प्रशिक्षण हो, उद्यमी सहयोग हो, तो हर तरह से एक परिपूर्ण विकास महिला का तब हो सकता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसे कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही, तो ये वेबसाइट में देख सकते हो या ग्राम पंचायत कार्यालय में चले जाइए, आपके जिला कार्यालय में चले जाइए, तो वहां आपको निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस यही है कि एक अपना कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग जब तक खुद अपना सपोर्ट सीख नहीं करते हैं, जाते नहीं है, तो मिलना सपोर्ट मुश्किल हो जाता है। पर मुद्रा योजना के लिए जो है नंबर हेल्पलाइन जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने 1800180111, ये जो मुद्रा की स्कीम के लिए है, या इसमें स्टैंड अप का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, जनधन योजना, या एक अपनी इंश्योरेंस की भी बात होती है कि हमने अपना इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ये ग्रामीण लोगों के लिए स्पेशल है, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो महज 436 रुपीज में, 436 रुपए में, या महज 20 रुपए में आपको साल भर का इंश्योरेंस मिल सकता है, 2 लाख या तक का, अगर एक्सीडेंट हो या डेथ हो किसी की फैमिली में। तो ये इस तरह का सपोर्ट भी है कि अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ इंश्योरेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन और हेल्थ कार्ड जो है आयुष्मान भारत, तो अपना हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निःशुल्क हेल्थ सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो अलग अलग स्कीम में है कि एक परिपूर्ण डेवलपमेंट महिला की है, तो स्वस्थ धानी दुकान तो होते ही जहाँ पे आपको फेयर प्राइस शॉप्स में फूड जो है कंसेशनल रेट्स में मिल रहा है, तो जैसे हेल्थ हो, फूड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर तरह से, जैसे उज्ज्वला योजना है तो गैस हमें जो मिलता है सिलेंडर का सब्सिडी मिल रहा है, जल जीवन मिशन के तहत हमें घर में अच्छा पानी मिल रहा है, महिलाओं को जाके दूर दूर तक पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इफ यू सी कि जो ये 360 डिग्री जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट और असेंबली की बात चल रही है, ये हो कब पाया, क्योंकि जहां से शौचालय से शुरुआत हुई, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि महिला शौचालय के लिए कहां जाए, घर में वो कर नहीं पा रही थी, बाहर असुरक्षित थी, तो वहां से शुरुआत होके फ्रॉम टॉयलेट टू द पार्लियामेंट, ये इतना बड़ा एक सफर है कि जहां पे महिलाओं की पूरी तरह से डेवलपमेंट हुई है।
1: और जिस तरह से आपने बताया स्कीम्स की लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, और किसी भी तरह से कोई भी एंगल से कोई चीज छोटी नहीं है जहां पर उनको हेल्प नहीं मिल रही हो, तो प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, क्या है कि लोग महिलाएं जो है सपोर्ट, उनको इतने सारे सपोर्ट होने के बावजूद, इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद, वो अभी भी बहुत सारे घरों में असुरक्षा की भावना है, बहुत सारी हेजिटेशन है, वो प्रॉब्लम कहां से अराइज हो रही है?
0: ये ऐसा है कि भाई किसी भी चीज में हमें अपनी स्वयं जो है स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखें कि सोशल मीडिया में आजकल महिलाएं और सभी हम लोग इतने एक्टिव हैं क्योंकि बहुत इजी होता है,
1: हाँ।
0: पर अगर किसी स्कीम के लिए कहीं जाना है, बैंक का लोन भी लेना है, तो फॉर्म भरने में हमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं,
1: हाँ।
0: तो ये स्टेप्स लिए बिना हमको तो सपोर्ट मिल नहीं सकता है ना।
1: मैम, एक सवाल और था कि एलिजिबिलिटी क्या सभी के लिए, सभी महिलाओं के लिए?
0: 18 से 50 तक का मोस्ट ऑफ द स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स हैं 18 से

0: 50 तक है, सिर्फ जननी सुरक्षा है वो 19 से है, क्योंकि लड़की तो 17 में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, 18 से प्रेग्नेंट, 18 शादी होगी। शादी की उम्र कम बढ़ाने में भी जो चल रहा है गवर्नमेंट का कि 21 कर दे महिलाओं के लिए, पर अभी हुआ नहीं है, पर ये भी कोशिश है।
1: अच्छा।
0: तो स्टेप पहला तो हमें ही लेना पड़ेगा
1: जी,
0: क्योंकि अगर हम अपना स्टेप उठाकर जा नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि कई कई औरतों को पीड़ित होती है, तो इसीलिए सखी वन स्टॉप सेंटर है, आंगनवाड़ी सेंटर है, जहाँ पे इतना तो हम लोग एफर्ट कर सकते हैं। अब किसी रूप से ऐसा हो कि महिला बहुत पीड़ित है, शोषित है, तो पुलिस स्टेशन है ही। और ऐसे एकाध इंस्टेंसेस हो सकते हैं कि रिस्पांस कभी कभी हमें लगता है ठीक से मिला नहीं है या रिस्पांस नहीं हो रहा है, पर आमतौर पे आजकल जो जिस तरह की पहल चल रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज एक्ट है, तो गवर्नमेंट भी सशक्त बनाती जा रही है सिटीजन्स को। तो एवरी स्टेप पर लोग, और ऑल इंडिया रेडियो में अगर हम देखें तो रोज हम लोग इस तरह की योजनाएं सुन रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: पर हम लोग सुनते कैजुअली, लेते नहीं है सीरियसली। तो हम लोग इसको जितना एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है आप तक पहुंचाने का, जैसे आज का ये प्रोग्राम है सवाल जवाब, हम सब लोगों से सुन के उनका जवाब दे रहे हैं, तो वी आर देयर। जैसे एक दरवाजा खुला हुआ गवर्नमेंट ने रखा है, ओपन रखा है आपके लिए, पर आपको भी उस दरवाजे तक पहुंचने का कुछ ना कुछ सपोर्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा मैं मानती हूं।
1: तो कदम हमें ही उठाना होगा, महिलाओं को ही उठाना होगा, बाकी हेल्प के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस, जैसा कि मैम ने कहा कि आकाशवाणी रेनबो तो आकाशवाणी के माध्यम से तो पहुंच ही रहा है, ये रेनबो हेल्पलाइन तो है ही, साथ में और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, या उनके लिए क्या सुविधाएं हैं वो बताने के लिए, या किसी भी फील्ड में जो भी अवेयरनेस है वो देने के लिए आकाशवाणी रेनबो हमेशा तत्पर रहता है। और रेडियो लगभग हर घर में पाया जाता है, नहीं तो आजकल मोबाइल में है, कहीं भी सुनते हुए आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो बहुत सारी बातें हुई और बातों का सिलसिला तो ऐसा लग रहा है कि चलता रहे, क्योंकि हम महिलाओं की बात हो रही है, हमारे अधिकारों की बात हो रही है और दो महिलाएं बात कर रही हैं तो ऐसे में बात रुके ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, समय की जो बाउंडेशन है उसको भी हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि आशियाना शो शुरू होने वाला है 2 बजे, उससे पहले हमें वाइंड अप करना होगा। लेकिन चलते चलते मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, और हेल्पलाइन नंबर तो बता ही दीजिए उसके साथ साथ।
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि हेल्पलाइन 181 तो है ही, इसके साथ आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, वेबसाइट है आजकल सारे सबके पास, मोस्टली सबके पास मोबाइल है, खुद के पास नहीं तो अपने सहेलियों के पास है, अपने परिवार वालों के पास है
1: जी।
0: और अगर वो बंद करके भी रख दिया हो तो गांव में ग्राम पंचायत कार्यालय है, तो ये नहीं कि हम कहीं जा नहीं सकते, आंगनवाड़ी सेविका आपके लिए उपलब्ध है, तो आप जाकर थोड़ा सा अप्रोच करें। और पर्सनली अगर मुझसे जीमेल या किसी तौर से जुड़ना चाहते तो मैं अपना vimshine@gmail.com, मैं विमशाइन नाम से ट्विटर पे भी हूँ, किसी भी प्रकार की आपको सपोर्ट लगे, एज ए इंडिविजुअल पैशन रहा है मेरा, तो आप निश्चित रूप से कभी कुछ लगे सपोर्ट तो मैं आपका ये माध्यम होकर ऑल इंडिया रेडियो से या गवर्नमेंट तक पहुंचाना संभव हो तो करूंगी। पर मेन जो आपको बताया कि हेल्पलाइन आपको गवर्नमेंट का तो है ही, ऑल इंडिया रेडियो है जो निश्चित रूप से 24 घंटे चल रहा है
1: जी,
0: डेली ये प्रोग्राम हेल्पलाइन वाली आती है
1: जी।
0: इससे बेहतर क्या कि मैंने देखा कि 5-6 लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी फोन यहाँ पे आ रहे थे, और आश्चर्य की बात है कि सारे पुरुष ही हमसे बात कर रहे थे, हम 2 महिलाएं भले यहाँ हो पर उत्सुकता इतनी है, और कि मतलब इस तरह की
1: कंसर्न है लोगों का, बट ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि ये योजनाएं काम कहाँ कर रही हैं। तो ये चीजें हैं, सिर्फ अवेयरनेस की वजह से या एजुकेशन की वजह से कई बार इनका लाभ हम कम उठा पाती हैं, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और ये हर परिवार के पुरुषों की जिम्मेदारी खासतौर से है, जैसा कि आपने कहा। तो आपकी बातों में तो बड़ा दम है, और लग रहा है कि दमदार आवाज लगातार चलती रहे, लेकिन क्या करें, अभी जो समय की सीमा है, तो हम फिलहाल आपसे आपको थैंक यू सो मच कहेंगे कि आइए आई और इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हमें, और ये योजनाएं हैं जो जिससे बहुत सारी महिलाओं को लाभ उठने वाला, आई एम श्योर अबाउट इट।
0: बहुत बहुत बधाई हो ऑल इंडिया रेडियो को, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
1: तो थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारी गेस्ट आर विमला, IAS रेजिडेंट कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आज हमने बात की संकट से सम्मान तक, महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में प्रयास। आपके साथ मैं बबिता त्रिपाठी थी, फिलहाल मैं जा रही हूँ, स्वाति आएंगी आशियाना लेकर। आप सुनते रहिए इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, हर घंटा है कुछ खास। बाय बाय।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रोग्राम हम कदम। जी, बुधवार दोपहर 2 से 3 बजे का वो समय जब हम डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते के नाम और आपके हम सफर के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले इस सफर में बनते हैं हम आपके एक छोटे से हम सफर एक घंटे के लिए। 2 से 3 बजे के बीच में सिर्फ वेंसडेज को आप सुनते हैं इस प्रोग्राम को हमारे 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। वैसे डिफरेंसेस की बात हम हमेशा करते रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, रिश्ते को मजबूत बनाना, ये सब चीजें हम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा जो है ना, ये एक अपहिल बैटल नहीं होती है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। आपके जो शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं ना, मतलब अगर डिफरेंसेस हैं तो उसकी एक अलग मेहनत है जो करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं तो वही क्या बात है, मतलब स्मूथ सेलिंग हो तो ऐसी हो। तो चलिए आज हम स्मूथ सेलिंग की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपके रिश्ते में जब आपके इंटरेस्ट भी एक दूसरे के साथ मिलते हो तो क्या वो वाकई में आपके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, क्या वाकई में उतना स्मूथ सेलिंग होता है जितना कि मैंने अभी अभी कहा, नहीं। तो चलिए जानेंगे हम आज के हमारे इस प्रोग्राम में 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। आप सुन रहे हैं हम कदम, मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूं आपके लिए रेखा भारद्वाज की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी बर्फी। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

जो रुकी सी चाह बाकी है। कितनी खूबसूरत सी बात है ना, हमेशा कुछ अगर बचा रहता है। किसी भी रिश्ते की बात करें हम या फिर किसी भी गोल की बात करें, मतलब इन जनरल अगर हमारे पास आगे देखने के लिए कुछ रहता है, अगर हमारे पास आगे ढूंढने के लिए कुछ रहता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ रहता है, तो हमेशा यू नो इट कीप्स अस गोइंग। कहते हैं ना कि हमेशा जो है अगर आपके सारे अरमान जो है फटाफट पूरे हो जाएं तो फिर एक टर्म आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बर्न आउट, वो हो जाता है। और रिलेशनशिप्स भी जो है ना अक्सर इस चीज़ से गुजरते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दो, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूँ स्वाति आप सभी के साथ। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शेयर्ड इंटरेस्ट होना या एक दूसरे के बहुत सिमिलर होने से आपके रिश्ते में जो है बेहतरी आती है, एक स्मूथ सेलिंग आती है या नहीं आती है। वैसे भाई जब आपके हॉबीज मिल जाएं तो अक्सर यही लगता ना कि अरे भाई वी आर सो सिमिलर, जब एक जैसे होंगे, एक जैसा सोचेंगे तो फिर लाइफ में डिफरेंसेस जो है ना उसकी जगह बहुत कम हो जाएगी। लेकिन एनीवेज जब हम शादी की बात करते हैं, इस बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते की बात करते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में आते हैं जी सात फेरे, वो खूबसूरत सा लहंगा शेरवानी, टेस्टी खाना, ढेर सारे वादे, ये सारी चीज़ें जो हैं भाई ये तो हर शादी का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो शादी में आप जो

घोड़े में आजकल जो है एक जैसा कलर आप सेम रख लेते हैं ना, क्या ये कलर्स बाद में भी जाके आपके सेम रह पाते हैं या फिर जैसे ही इन कलर्स की चमक जो है थोड़ी सी फेड होने लग जाती है वैसे ही जिंदगी की असली पिक्चर में आपको समझ में आता है कि भाई इतना स्मूथ सेलिंग नहीं है और वही छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बहस जो है वो आपके बीच में आने लगती हैं। क्या उन कपल्स की लाइफ वाकई में ज्यादा सॉर्टेड होती है जिनके इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं या फिर डिफरेंसेस जो हैं वो आपकी जिंदगी में स्पाइस को ऐड करते हैं? तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ही फूडी टाइप्स हैं तो और वीकेंड आते ही आप दोनों जो हैं अपने फ़ोन पर नए कैफे स्ट्रीट फूड जॉइंट्स की लिस्ट रेडी करके बैठ जाते हैं। आप दोनों को पता होता है भाई दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे खाने हैं तो कहाँ जाना है या शहर की बेस्ट सुशी जो है वो कहाँ पर सर्व होती हैं। तो सोचने में कैसा लगता है? लगता है ना बड़ा कूल है भाई, ना कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जब भी टेक अवे की बात हो या कहीं बाहर जाने की बात हो ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सबके पसंद का ना हर बार हो नहीं पाता है। लेकिन अगर आप दोनों की पसंद एक ही हो तो आपको कितना कूल रहता है ये। भाई सुनने में तो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है और जब शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं ना तो अक्सर एक फायदा तो जरूर होता है कि भाई क्वालिटी टाइम जब आप बिताना चाहते हैं अपने पसंद का कोई भी काम आप करना चाहते हैं ना तो उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है सोचना नहीं पड़ता है। अदरवाइज हम सभी जानते हैं कि जब घर में दो लोग हों या चार लोग हों तो ऐसे में जो है ना सबके हिसाब से किसी भी काम को करना, ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया है कि चाहे बाहर जाने की बात हो चाहे घर मंगाने की बात हो या वेकेशन डिसाइड करने की बात हो छोटी से छोटी आउटिंग भी कभी ना बड़ी पेनफुल हो जाती है जब लोगों के इंटरेस्ट आपस में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में शेयर्ड इंटरेस्ट हो तो एटलीस्ट ये वाली जो एक परेशानी है ना उससे आपको छुटकारा जरूर मिल जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं हम कदम मेरे यानी स्वाति के साथ। मैं प्ले करने जा रही हूँ शाश्वत सिंह की आवाज, बहुत ही अमेजिंग सा गाना है चुना है मैंने आप सभी के लिए फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन दिनों। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। लाइफ इन अ मेट्रो, जी लाइफ इन अ मेट्रो जहां पे इतनी सुरीली हो सकती है, जो कि अभी अभी आपने सुनी, उसके साथ साथ बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकती है, इसके बारे में भी हम सभी जानते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कोशिश है ना हमेशा बराबर ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, सबको करनी पड़ती है। और अगर आप लकी हैं और आपके पार्टनर के और आपके इंटरेस्ट जो है वो काफी हद तक सेम है या सिमिलर है, तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत ना कुछ चीजों में कम हो जाती है, सब में नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। आफ्टर ऑल परफेक्शन जो है वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्हीं इम्परफेक्शंस को जो है ना अपने हिसाब से ढाल लेना या खुद को उसके हिसाब से ढल जाना, यही चीजें तो हैं जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाकर रखती है। एनीवे, शेयर्ड इंटरेस्ट जो होते हैं वो जहां पर आपको एक नो बोर्डम जोन में रखते हैं, यानी कि आपके पास बात करने के लिए हमेशा एक कॉमन टॉपिक होता है, आप कभी भी बोर नहीं होते हैं। और इंस्टेंट प्लान्स तो जो मैंने आपको बता ही दिया जी, प्लान्स के ऊपर डिस्कशन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि आप दोनों का इंटरेस्ट तो एक जैसा ही है, तो ऑब्वियसली एक जैसा ही सोचते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम स्पिरिट होती है, जो कि बहुत जरूरी होती है, भाई एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना, फिर चाहे वो शेयर्ड इंटरेस्ट के जरिए ही क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। और वैसे भी अक्सर कपल्स थेरेपी का भी तो ये हिस्सा होता है ना, जब आप शेयर्ड एक्टिविटीज करते हैं या फिर आप एक दूसरे के इंटरेस्ट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में आपके रिश्ते को जो है ना मजबूती तो ऑब्वियसली आती ही है। हाँ, इसके पीछे बहुत सारी साइंस होती है, मैं साइंस में नहीं जाऊंगी, यहाँ पे टेक्निकल बातें क्यों कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं ना हम कदम के बारे में। तो हम कदम के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो मशी बातें तो मैं ज्यादा कर सकती हूँ, लेकिन टेक्निकल बातें ना मैं जरा कम ही करूंगी। बट एनीवेज, ये आपके और मेरे बीच का एक इनसाइड जोक है जिसे हम हमेशा जो है ना आपस में ही रखेंगे, क्योंकि आप और हम भी फिलहाल इस प्रोग्राम के जरिए हैं एक दूसरे के हम कदम। सुन रहे हैं इसे आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। लेकिन ठहरिए जरा, शेयर्ड इंटरेस्ट हो गए, सिमिलैरिटीज आ गई, लेकिन भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला फॉर्मूला जो है वो फेल हो चुका है, नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो मैंने चुना है, वो मैं प्ले कर देती हूँ। आती हूँ वापस इस खूबसूरत से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है हम कदम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। अभी जो बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक आपने सुना फ्रॉम द मूवी विकी डोनर, ये था अभिषेक अक्षय का, और ये खूबसूरत आवाजें जो आपने अभी सुनी ये थी अदिति की और उनके साथ क्लिंटन सेरेवो। मतलब क्या कोइंसिडेंस वाली बात है, देखिए ना शेयर्ड इंटरेस्ट की मैं बात कर रही हूं, और ब्रेक के दोनों तरफ जो मैंने गाना प्ले किया ना, एक क्लिंटन सेरेवो की आवाज में था और उससे पहले जो मैंने आपको सुनवाया रॉकन मूवी का वो डोमिनिक सेरेवो की आवाज में था जो उनकी वाइफ है क्लिंटन सेरेवो की। और ये दोनों म्यूजिकल कपल इन दोनों ने आज हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। बट एनीवेज 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आज के इस प्रोग्राम में यानी कि हम कदम में हम बात कर रहे थे कि शेयर्ड इंटरेस्ट। तो भाई बॉलीवुड कपल्स की जब हम बात करें, फिर वो चाहे सिंगर कपल्स हों, एक्टर कपल्स हों, या फिर किसी भी तरह से स्ट्रेट से जुड़े हुए हों, तो ऐसे में हमें लगता है कि भाई उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट, कितनी सेटल होती होगी ना। लेकिन हमारी मूवीज क्या दिखाती है, हमारी मूवीज तो हमें ये बताती हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। भाई एक शांत होता है पढ़ाकू लड़का होता है, एक चुलबुली बिना सोचे समझे बोलने वाली लड़की होती है, और इसी तरह के कुछ जब हम कंट्रास्ट दिखाते हैं तो वो जो है ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। पता है क्यों? क्योंकि असल जिंदगी में भी ना ज्यादातर ऐसा ही होता है, डिफरेंसेस जो होते हैं वो हर रिश्ते का पार्ट होते हैं। आप कितने भी सिमिलर हो जाएं, डिफरेंसेस कुछ ना कुछ तो जरूर रहेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के नाम पर जब बॉलीवुड जोड़ी की बात आती है ना, तो मुझे तो राहुल सिमरन ही याद आते हैं, तो चलिए उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि राहुल जो है ना उसको शांत कमरे में बैठ के किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। नहीं, मेरे ख्याल से उल्टा हो गया ना, मूवी में अलग था। तो चलिए ठीक है, सिमरन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और राहुल को जो है घूमना बहुत पसंद है, उसको पार्टीज पसंद है, सोशलाइजिंग पसंद है, और सिमरन जो है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। तो अब क्या होता है ना, जब आप लाइफ में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा दोनों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। भाई अब राहुल की वजह से सिमरन को जो है सोशलाइज करना पड़ता है, और सोशली वो जो है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जब लोगों से मिलती जुलती है तो उसको उसका एक वैल्यू जो है वो समझ में आता है। लेकिन उसके साथ साथ जो राहुल है ना उनको भी अपनी जिंदगी में एक ठहराव का जो अनुभव है वो होने लगता है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब दोनों के शौक अलग अलग होते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर वक्त जो है आप एक दूसरे का साथ ढूंढें ही। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मी टाइम को लेकर ना बड़े ही ज्यादा कहना चाहिए कि पर्टिकुलर होते हैं, हमें अपना मी टाइम चाहिए। तो ऐसे में शेयर्ड इंटरेस्ट में ना वो मिलना थोड़ा सा कम हो जाता है, और ऐसे में जरूरत होती है जब आपके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं तो दोनों अपना अपना मी टाइम है ना थोड़ा आराम से खोज लेते हैं। हर चीज के प्रोज हैं कॉन्स हैं, हर चीज के फायदे हैं नुकसान हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट की अपनी अलग वैल्यू है जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। उसके साथ साथ डिफरेंसेस अपना एक अलग मसाला है जो आपके रिश्ते में ऐड करते हैं। मजे की बात यह है कि इन दोनों चीजों को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसे कैसे अपनाते हैं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी वीकनेस बनाते हैं, ये ऑब्वियसली हम सभी के ऊपर होता है कितनी मेहनत हम अपने रिश्ते पर करते हैं। इन द एंड बात इसी चीज पर आ जाती है कि हम एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ वो म्यूजिक जो आपके कानों पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और उम्मीद है आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। मैं प्ले करने जा रही हूँ अगला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, बहुत ही अमेजिंग सा, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। आप सुनते रहिए प्रोग्राम हम कदम, ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। शेयर्ड इंटरेस्ट के ऊपर की हमने आज बात, और बस इतना कहना चाहती हूं कि आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग अपने कपल गोल्स को जो है दिखाने में, एग्जिबिट करने में, या फिर उनको देख देख कर प्रेशर लेने में ना आजकल बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि ये सब चीजें हो रही हैं। इसकी वजह से अक्सर जो है कपल्स प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि वो मैच करना चाहते हैं उन सभी को जो अपनी इंस्टाग्राम रील्स जो है या फिर कुछ इसी तरह की जो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को जो है आप दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को एक कहना चाहिए कि एक प्रेशर जो है वो आने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, दिक्कत ये आती है कि जब आपके इंटरेस्ट शेयर ना हो लेकिन उसके बावजूद आप जमाने को दिखाने के लिए जो है उन्हें शेयर करना चाहते हैं, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअल में आपके हमको तुमको बेशक पसंद हो मगर आपके इंटरेस्ट की नहीं होती है। तो भाई इस तरीके का जो भी स्ट्रेस है ना वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ सहजता से नहीं आती है ना वो चीज़ जो है कई बार बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है और आगे जाके फ्रिक्शन का सबब भी बन सकती है। चाहे आपके इंटरेस्ट शेयर्ड हो या फिर आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, हर तरीके से जो है ना अगर आपके कोर वैल्यूज सेम है तो बिल्कुल जो है आपके जिंदगी में इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ इतनी ही मेहनत काफी होती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप जो है सोशल मीडिया वर्दी बनाएं या फिर उस तरीके की औरों की रील्स देखकर आप ये सोचें कि हाँ जी हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। एनीवेज थोड़ा यहाँ पे प्रीची ज्यादा हो रहा है तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ भाई मतलब की बात आप समझ गए ना। अगर आप मेरी भावनाएं समझ गए हैं तो उतना काफी है, और वही है जो समझ जाना चाहिए। अगर एक दूसरे की बात हम समझ जाते हैं देन ऑब्वियसली वी हैव अ ट्रस्ट बिटवीन अस। फिलहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगला प्रोग्राम जो है जो आप सुनने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के बाद में, क्योंकि समय जो है वो खत्म हो रहा है, तो अगला प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ जुड़ा हुआ, सेहत के समाधान जो प्रस्तुत करता है, नाम है उसका रेडियो डॉक्टर। और ये प्रोग्राम जो है आज आप सुनेंगे समर प्रॉब्लम्स और उनके आयुर्वेदिक जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर ये हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा। और इसमें हमारे साथ आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट होंगे CGHS के, और वो आपको सेहत संबंधी जो सुझाव हैं और जो सॉल्यूशंस है, जो समाधान है वो आपको देंगे। अगर आपकी गर्मियों से जुड़ी हुई परेशानियां और उसके आयुर्वेदिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उससे जुड़ा अगर कोई भी आपका सवाल हो या आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो प्रोग्राम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं 0112342108 और 0112342108 पे, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी जो सवाल हैं वो आप पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9868107070। जरूर सुनिएगा अगला प्रोग्राम, क्योंकि गर्मी जो है वो बिल्कुल बहुत ही अपने पूरे फुल जोश में शुरू हो गई है, तो ऐसे में उससे बचने के लिए हमें बहुत से उपाय जो है वो अपनाने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगला प्रोग्राम जो है वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ आपके बहुत ही काम का होगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की जो प्रोग्राम हम कदम आपने मेरे साथ सुना है इसकी प्लेलिस्ट आपको जरूर पसंद आएगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर समेटती हूँ, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। ये प्रोग्राम था हम कदम, मैं हूँ स्वाति और मैं आपसे करूंगी मुलाकात 4 से 5 बजे के बीच लेकर अल्फाजन। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: जगदीश जी आपने इतना अच्छे से गा ले लिया है, और ये गीत को किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: बहन जी मेरे मित्र हैं, मेरे पास ही बैठे हैं, वीरेंद्र कुमार वकील जी, और मेरे मित्र हैं जी लोकेंद्र वर्मा जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से, पंजाब से हैं सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से, और गंगा सिंह रावत जी हैं नैनीताल उत्तराखंड से।
0: और कुछ नाम लेना है आपको?
1: और बहन जी नाम तो बहुत ज्यादा है मित्रों के, पर बस अभी इतने ही लेंगे जी।
0: ओके जी, जगदीश जी आपने कॉल किया और आपने जो गाने पसंद किया है वो भी है, मैं बजा रहा हूँ, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया,
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: वेलकम। होने ढगा सब मिलना प्रोग्राम सबसे पहला टीडीएस से किस्मत फिल्म की गेट गाय से महेंद्रा कपूर और रोहित गेट हुनी बोले मनोगिना আমি খান লোটে কল করি কিনা পছন্দ করেছে, অল দ্য ওয়ে ফ্রম পাঞ্জাব জগদীশ জি পুরা পছন্দ করেছে, আর তার লাগা কোনোবা সাথী খান কিবি তার ডেডিকেট করে কিনা আছে, তো শুনিব কিসমত ফিল্ম কি গেট।

0: हेलो।
1: जय माता जी।
0: जय माता जी।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और
0: जी,
1: मैं
0: आज तो
1: जी
0: आपका नाम मालूम पड़ गया है पूरन जी।
1: मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी जी बोले, कैसे
1: मैडम का
0: हैं?
1: नाम है। बस बढ़िया हूँ मैडम, आप सुनाओ।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बोलिए, कौन सा गीत सुनना है आज?
1: जी मैडम आज फिल्म का नाम रहेगा अनाड़ी।
0: अनारी।
1: यस
0: अनारी, अनारी में कौन सा गीत?
1: नई नई वाली अनाड़ी है आपके पास। मैं गाने के बोला है जाने जा।
0: ये मेरे पास जो है वो नई वाली नहीं है।
1: तो फिर नई वाली नहीं है।
0: मेरे पास नई वाली नहीं है। राइट।
1: अच्छा इसमें किसके किसके आवाज है या नाड़ी में पुरानी वाली है तो कुमार सानू की आवाज नहीं है।
0: ना ना, ये पुरानी में तो लता का आवाज में होगा, मुकेश का आवाज में होगा,
1: तो
0: मनदे का
1: फिर
0: आवाज में है।
1: जी मैडम फिर मैं एक रिश्ता मूवी का गाना सुनूंगा।
0: कौन सा?
1: एक रिश्ता
0: एक रिश्ता देखता
1: वो
0: हूँ।
1: था
0: एक रिश्ता में कौन सा बोला?
1: इसमें गाने के बोला दिल लगाने की।
0: एक रिश्ता शायद ये भी नहीं है ना क्या?
1: देख लो अगर हो जाए तो मिल तो जाएगी। ये
0: एक रिश्ता नहीं है।
1: तो हमारा दिल आपके पास है।
0: हमारा दिल आपके पास है। हमारा दिल ना?
1: हाँ जी हमारा दिल आपके पास है।
0: ओके। हमारा दिल ये भी नहीं है।
1: ये भी नहीं है
0: नहीं है।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा वो डड्डी डड्डी पिक्चर मिलेगी। डड्डी डड्डी पिक्चर है ना।
0: कौन सा वाला?
1: हेलो डड्डी पिक्चर डड्डी है ना वो लाला गाना है इसमें।
0: और वो कुर्बानी का
1: नहीं डड्डी डड्डी
0: स्पेलिंग बता सकेगा आप?
1: उसमें गाने के बोल रहे हैं उलाला तू है मेरी पैंट ये गाना है उसमें।
0: उलाला।
1: हाँ जी
0: पूरन वर्मा जी, शायद ये भी
1: तो
0: नहीं है।
1: फिर फिल्म का नाम रहेगा सनम सरदार।
0: ओके। आप लोग प्रोग्राम सुनता है कि नहीं है, कार्यक्रम सब में?
1: जी मैडम सुनते हैं ना।
0: तब तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं बजाया तो शायद हम लोग के पास नहीं है, इसलिए नहीं बजाता है।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा सनम सरदार।
0: सनम सरदार,
1: हाँ जी
0: ये भी कभी भी मैंने बजाया तो नहीं है। देखता हूँ। नहीं है।
1: ये भी नहीं है
0: नहीं है।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा बेवफा सनम।
0: बेवफा सनम तो हो सकता है। बेवफा सनम में कौन सा वाला गीत सुनना है?
1: कौन सा गाना मैडम इसमें।
0: वफा ना रस आई, अच्छा सिला दिया तूने, ओ दिल
1: जी
0: तोड़ के
1: ओ
0: जिंदगी।
1: दिल तोड़ के
0: ओके। और किसी का नाम लेना है आपको?
1: सबसे पहले तो आप है तो
0: जी, मैं तो यहाँ पे
1: मेरा।
0: ही है।
1: हाँ जी आप भी है पहले आपको ही डेडिकेट है। और मेरा
0: ओके,
1: दोस्त
0: थैंक यू।
1: हाँ और मेरा दोस्त है राकेश है भगवान सिंह परवान जी है अभिनाथ जी है रमेश प्रजापति जी है गोल्डी बाई है पुरुषोत्तम है पंची राम है और आपके कार्यक्रम में बिमल है और अमर है और कोई माँ के श्रोताओं खासकर कोई माँ के श्रोताओं का जितने भी आपके कार्यक्रम में लाइव जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता हूँ ये गाना।
0: ओके, ठीक है पुरान।

0: जी आपने कॉल किया, जितना भी आप मांग किया है मेरे पास नहीं था उसके लिए माफी चाहती हूँ आपको।
1: जी
0: फिर
1: मैडम, वो
0: भी
1: थोड़ा गाने मैडम क्या है कि थोड़ा वो हम जो श्रोता बताते हैं ना, तो उसमें गाने आप थोड़ा वो डालिए मैडम इसमें, ताकि नए नए गाने सुनने को मिले हमको।
0: देखता हूँ देखता हूँ। ठीक है, ओके,
1: थैंक यू।
0: कॉल करने के लिए शुक्रिया। उनका सब बिल्ला प्रोग्राम टी बार दूसरा गिडिया से उदित नारायण लगा वास्ते बेवफा सनम फ्लेम आउट और ए टू गेट टू पसंद करी से राजस्थान बरा पुरान वर्मा और एफ एम ट्रकोपन लगा थ्रू प्रातार लगा किसुमान साथी बिल्क बनाई के ना से जोड़ाई के ना से तार खान के तार डेडिकेट कुरी दी के ना से और कोहिमा पर जिमान जोन भी एटू प्रोग्राम होने से अपना खान सब की भी डेडिकेट कुरी दी के ना से तो हुनिबो बेवफा सनम फिल्म की गेट।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कौन से?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: जी,
0: कहाँ से बोल रहा है?
1: ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से।
1: जी हाँ, मध्य प्रदेश।
0: ओके, बोलिए कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। और
1: जी,
0: कैसे हैं हालचाल आजकल?
1: हाल जी, काफी गर्मी थी यहाँ पे आज।
0: हाँ,
1: हाँ, 45 डिग्री करीबन टेम्परेचर था, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगी है। गर्म काफी दिन में हवाएं चली थी यहाँ पे।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है। बोलिए कौन सा गीत सुनने के लिए आज सोच रहा है?
1: जी बिल्कुल, बताऊँ, फिल्म का नाम है विवाह।
0: विवा
1: हाँ,
0: विवा,
1: इसमें
0: अगर
1: विवाह नहीं मिल पाएगा
0: ये,
1: आप।
0: हाँ अगर ये नहीं है तो और कुछ है आपका मन में?
1: हाँ, सिर्फ तुम फिल्म का,
0: कौन सा?
1: सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम।
1: हाँ,
0: ओके, सिर्फ तुम में कौन सा वाला गीत सुनना है आपको?
1: इसमें वो है ना, पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं।
0: पंछी सुर में गाती है, उदित नारायण का आवाज में। ओके, और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं आकाशवाणी के, सारू नूर अंसारी, आशुतोष अविनाश, सुनीता जी, भगवान सिंह परमार, केसरी सिंह राजपूत, लोकेंद्र वर्मा, इन सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, ठीक है। प्रेम सिंह
1: जी
0: जी, आपने कॉल किया और आपका गाने भी मैं यहाँ पे लगा दिया है, आप सुनिए और एन्जॉय कीजिए। और कॉल करने के लिए शुक्रिया,
1: जी थैंक यू सो मच। ओके,
0: वेलकम,
1: बाय।
0: बाय। উনি ডা সব বিলাক প্রোগ্রামত এইবার দুসরা গীত কারণে আমি খান লটে কল করে কিনা অনুরোধ করেছে উজ্জয়ন মধ্যপ্রদেশ প্রা প্রেম সিং সিসোদিয়া আর তারপর পছন্দ করেছে সির্ফ টুম ফিল্ম কি গীত গাই আছে উদিত নারায়ণ আর তারপর তার লাগা এফ এম লা কিছু মান্ত সাথীবিল ডেডিকেট করে কিনা আছে তো আপনার খান সব তৈয়ার আছে কইলে মানে শুনিবি আর এনজয় করবি।

0: Hello? Hello?
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए, आपका
1: मैम
0: शुभ
1: मैं
0: नाम।
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम आपसे। जी
0: शिवा लोहा,
1: शिवा लोहट मैम। जी
0: लोहट, ओके, मध्य प्रदेश से बोल रहा है,
1: जी जी जी
0: और आज पहली
1: मैम।
0: बार कॉल किया है आपने।
1: नहीं मैम, मेरा दूसरी बार कॉल है ये।
0: ओके, मेरे साथ तो पहली बार होगा।
1: जी, आपके साथ पहली बार है, आपसे पहले सर से बात हुआ था।
0: जी, इसलिए तो आपको स्वागत
1: जी
0: है
1: मैम, जी
0: कार्यक्रम पे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी
1: जी
0: बोलिए, हालचाल कैसे हैं?
1: आपसे बढ़िया है मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम।
0: मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूं। और आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा मस्ती।
0: मस्ती।
1: जी इसमें एक गाना रहेगा आनंद राज आनंद जी की आवाज में, दिल दे दिया है जान को मैं देंगे।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: हमारे मित्र रहेंगे पूरन जी, गोल्डी जी, राकेश जी, अविनाश जी, पुरुषोत्तम जी और तमाम सुनने वाले और
0: ओके
1: स्पेशली आप।
0: ओके, शिवा लोहाट, आपने आज कॉल किया है और पहली बार आपको बातें भी हुआ है, बहुत अच्छी लग रही हूँ। और आपका गीच पे मैं
1: जी
0: लाइन अप किया है, आप सुनिए और एंजॉय
1: जी मैम,
0: कीजिए। और कॉल
1: थैंक
0: करने
1: यू
0: के
1: मैम,
0: लिए धन्यवाद,
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। हुनी ढगा सब बिलनाक प्रोग्राम टे एक बार दूसरा गीत दिया से आनंद राज आनंद लगा वास्ते फुई मसे मस्ती आरो इठुगे पसंद कुरी के ना अनुरोध कुरी से मध्य प्रदेश पर शिवा लोहाट आरो तार ब्रातार लगा किसुमंत साथी बिलाक एफ एम ट्राइकोपन ला साथी बिलाक के डेडिकेट कुरी के ना से आरो हुनी ढगा सब बिलाक के भी ताते ताए ইনক্লুড কৰি কিনে আছে। তো যদি আপোনাৰ খান এতিয়া লগিবি টিউনিন আছে কৰিলে মানে শুনিবি আৰু এনজয় কৰিবি মাষ্টি ফিল্ম কি গীত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान

0: 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच

Program सबसे पहिला त इतिहास फ्लेमोट अपना लुके अनुराधा पोचवाल र हरिहरन लगा वास्ते हुनेले हुनेरगा सबिलाग दुसरा गीत को न बजागुते यत एकटा दुईटा मेसेजेस आइकिन आसे लुइकिन पुरै दिएसे सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप खानप्रा एफएम ट्रैकपन ल फैमिली सबके गुड इवनिंग विश गुरासे अ वेरी गुड इवनिंग टू सपत श्रृंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप और गुड इवनिंग विश आको आहिकिन आसे दुर्गेश नागनपुरी राधेश्याम नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम भाई बाबू दिव्यांश सूरज कुमार दक्षे सूरज वर्मा ऋषभ कनक भावना वर्मा प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेन्द्र और ममता भाई वर्मा अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू दुर्गेश जी एंड द बिग फैमिली इतना समय टी भी आगे प्रोग्राम के साथ दिया निमित्ते खुशी जाना दी तो शुनी थका सब और भी अपना खाला मेसेजेस आना आसे कहले मानने लिखना पूरी दिया हम इतना कारण शुनब अर्थ फिल्म की गीत गई आसे चित्र सिंह

साथ साथ फिल्मर अपना जगजीत सिंह और चित्र सिंह लगा वास्ते हुनेले ए बार दूसरा गीत दिया से फितरत फिल्म की गीत गए सैनुराधा पठुआ।

हुने ठगा सभ्य लाग्छ रोम फिल्म की गीत लगत आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज प्र आज गर्ने हिन्दी फिल्म गान प्रोग्राम दिया यात प्रसेस कुरे आसे हामी गान अकोलक कुरे हबो आहिया काली फुजिर 6 बजी हुने ठगा सभ्य लाग गुड नाइट।

0: कोयल से तेरी बोली कुकु तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।